सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी, कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहां भंडारे में बनती है वो नहीं, खुश कर दो तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा। तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी

करता रहता हूं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वायुमंडल के प्रभाव में जिस बात समझ तो है, एक सेकंड में विदेह बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेह माना जैसे ज्यादा हो गया
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सबकी बातें कहाँ

Chicharrón.

Besser, sagt

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी पाप दादा भी देखेंगे, एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतने परसेंट सेवा की, 40%, 80%, 10%, 20%, सारा परसेंटेज लिखे, बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वाले को, लेकिन बैलेंस, स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है, सब रिजल्ट लिखेंगे। सारा परसेंटेज लिखना बेटी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज, क्यों टाइम नहीं होता है पढ़ने का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, बाप कहते हैं रोब क्यों किया, कहती है मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया, किया नहीं कराया गया मुझे। अभी बाप क्या कहे, फिर क्या कहती है, अगर आप भी होते ना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप सभी बाप के सिकीलते बच्चे जो बाप के बन गए वो कितने सिकीलते बाप दादा भी सिकीलते बच्चों को देख खुश होते वाह बच्चे वाह। पुरुषार्थ में थकना नहीं, कोई भी छोटी मोटी बाधा आती है मदद लो, नहीं तो किसी से मदद नहीं लेनी हो तो योग बल से चेक करके उसका कोई ना कोई सहयोग ढूंढो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी अपने अंदर चेक करो, मेरे वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई सकते हैं उसको परिवर्तन करने में। सकते अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है। चलो आपके जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबर वार तो है ही ना, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो पाप जज है ना। आप सब जज बन गए हो एक दो के, बाप भी तो देख रहा है ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप सर्व बच्चों प्रति याद प्यार, सर्व बच्चों को मीठे मीठे का दो चार करवे और बाकी मीठे का फिर भी ऐसी आत्माओं के वृत्त भी सदा रहम दिल बने किमिया के सागर बने, लेकिन अच्छा आपने अपने वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, इससे आपको क्या फायदा? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो।

0: संकल्प याद की पावर कम नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्मा ही संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी पाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपने वृत्ति को अपने लिए दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो, नॉलेज फुल भले बनो, लेकिन अपने मन में धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचरा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया वाणी से परिवर्तन, सिक्का से परिवर्तन, बहुत धीमे गति से होता है लेकिन बहुत धीमे गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेज फुल बन स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसे निश्चय जारी निश्चय में पास होना है, वह तीन में दो में नंबर वन होना है। इसके विनाश की तैयारियां होते भी अभी रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती, प्रकृति भी कहती अब बहुत बोझ हो गए। प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती, माया भी कहती कि मैं जानती हूं कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है, लेकिन ब्रह्मांड परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते। बिठा देते मेरे को तो अपना राज लाने में ये चार डिश परसेंट में

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है। और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं कि नहीं आते? आते हैं लेकिन बीच बीच में लेकिन आ जाते हैं, आ जाते हैं। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की है, मैं जा रही प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है टीचर्स, एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? आ गया याद, आ गया। अच्छा, एक शब्द है अपमान के रूप में भी मैं आते हैं, और कमजोर करने में भी मैं आते हैं। मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वो ही राइट है, वही होना चाहिए। और जब होता नहीं है, ये अपमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाते हैं, और मैं कष्ट भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। परेशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अपमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करेगा। शराबी कोई कहेगा ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। ये अपमान की निशानी।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जाती

उससे नहीं भगाते, तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे पढ़ रहे।

Papi.

आश्चर्य नंबर वाले बच्चे को भी सदा

चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता

ऐसे समय

0: आवश्यक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जगत

Iskelye.

Avísame. Yo que sé.

ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं।

Chansky. Touching. Ese es...

अभ्यास चाहिए। इसका साधन है

Será?

उसे आते

0: शमा करने का। परिवर्तन करने का और अटेंशन।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो इसरा बाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो, बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लाऊ, ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो, वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर दे। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके दिखा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा,

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: क्वेश्चन मार्क सोचने के सबसे आश्चर्यवतों के सोचने को फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। वो स्थिति को नीचे ऊपर करता है। समझा?
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शांति का

0: सेवा चाहिए, वाणी की सेवा। तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है अपना ओलेना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sea Bun Joe.

इसको

0: से क्या हो जाएगा? इसलिए बाप दादा पहले से इशारा दे रहा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले भी कहा है, हर एक बच्चे की जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Peace.

0: चिवी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया तो ये पहला पाठ मैं कौन इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो ही आत्मा अनुभव करी मैं आत्मा करावन हार बन करम करा रही हूं। करन हार अलग है, करावन हार अलग।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये मिलन विचित्र

Three.

people.

مخزه هر بچه

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे, टेंशन पे रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो, मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लिखे। चाहे तीन दिन का प्रोग्राम कराओ, चाहे एक दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य एक समय एक और चारों ओर देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम रखे। लक्ष्य रखो अनुभव बनाने का। सब सुन के चले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके आप लोग भी बाप के बने कैसे, कुछ ना कुछ अनुभव किया, चाहे प्यार का, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का, आचान करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ। अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये आशी है दृष्टि लेना बाबा से, समर्पित वालों की ये आशी।
2: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना है, ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी है। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समान, ऐसी दृष्टि लेना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sutilna. Sutil. Acan. Karena pelipi. Kayane. Ke. Korova. Sena. Ke. Nimitta Panivimavir Ka Kalyan Kisya Dwaramva Shakti Dwaramva To Shakti Ka और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण

क्यों बना साकार पाठ परिवर्तन।

नहीं धारण करता तो आप इतनी अंत में यहां पहुंच नहीं पाते क्यों? के वायुमंडल की प्रांतिया इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप जल्द से जल्द बच्चों अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, देख रहे हो फास्ट गति हुई है या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दही अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा के मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करनहार पर बाप सम्मान न्यारे और प्यारे, बाप सम्मान बनने चाहे तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज, लेकिन मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार मालिक
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या तीसरा करता है, बाप इतना भी फोर्स देके कहते हैं, अगर कोई फिल्ला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा ने आज थोड़ा स्पष्ट सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता है? बुरा लगता है? नहीं। अच्छा, तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रत समय सदा नहीं, कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से, क्या है सबको देख लिया है, महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे, अभी महारथी जब बदलेंगे ना हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्स दिला के भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे, इसलिए मन को ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय है, अटूट अचल। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझा?
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। ये नहीं सोचना, विनाश होना है अचानक। पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे 2000 तो सोचा था, वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुना ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले सुना देते हैं, अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में। चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो, जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

रिजल्ट में। प्रैक्टिकल पर आप सब सर।

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वधूवन हर एक बच्चे का घर है, ये तो सेवा अर्थ बिन बिन स्थान में भेजा गए हैं, क्योंकि विश्व सेवक बनना है ना, वो लेना नहीं रह जाए। हमको पता नहीं पड़ा हमारा बाप आया, वर्षा देके गया और हमें पता नहीं पड़ा ये वो लेना रह नहीं जाए। इसलिए बाप दादा हर समय यही कहते, अड़ोसी पड़ोसी गांव गांव एरिया एरिया में ये संदेश जरूर दो, अपना भाग्य, लेकिन वो लेना नहीं रह जाए। संदेश देना आपका काम है, मानना भाग्य बनाना वो उन्हों के हाथ, लेकिन आपकी तरफ से कोई उड़ने नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

réfléchir.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे वो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना, तो अपने ऊपर ही हंसी आएंगे, आएंगे ना हंसी, हंसी आएंगे ना, तो जो किट किट करते हो ना, वो खत्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो और को भी स्वमान से देखो, स्वमान से देखेंगे ना, जो कोई भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई किटकिट होती है तो पसंद आता है, नहीं आता है ना, वो देखो ही एक दो को स्वमान से। ये विशेष आत्मा है, पाप के पालना वाली ब्रह्मन आत्मा, ये कोटों में कोई कोई में भी कोई आत्मा। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस एक बिंदी से तो देख, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बस ये आत्मा आत्मा को देख रही, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मक वृत्ति, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना, ठीक है ना?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर वन

Habitual.

0: कोई भी अपने विशेषता को सदा काल का बनाना, ये आवश्यकता है, क्योंकि पेपर सदा नहीं आता है, बीच बीच में पेपर ड्रामा अनुसार होते, इसलिए सदा टेंशन से बहुत अटेंशन देते भी है उनको, तो बाप दादा दीवर पुरुषार्थियों की लिस्ट में रखते, अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ समय दीवार, कुछ समय बीच में फिर पेपर आते, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो चलो तो स्वमान कहती जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी, उसको यूज करो क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली। तो बाप दादा ने देखा सत्ययुग में तो राजभाग मिलेगा लेकिन ये स्वमानों की माला संगम युग की देन। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चों के स्वमान के स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान के अथॉरिटी में रहो। कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान उदी में रखा उस स्वमान खजाना है ना, इसको यूज किया क्योंकि खजाना भरने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देवान खत्म हो जाता। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है ऐसे एक एक शक्ति एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगाओ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है माया आ गई, माया आ नहीं जाती लेकिन माया ने बाप को सुना है कि मेरे को आह्वान करते है तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। कोई भी हल्का संकल्प करते है माना माया को आह्वान किया, शक्तियों को छोड़ता है तो माया को प्राप्त हो रहा है। नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, योग संगम युग का गायन है। एक एक दिन दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव। तो उमंग उत्साह है, तो हर दिन उत्साह। इसलिए पक्का रखना रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करें।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Dr. Funny.

immer gering.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: परम धाम। साथ में अपने राज की
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

franzotti fanciannuti usme amara bipato na jai akar bhi hum log ko kab chance de aur aapki ichcha hai आप इशारा भी करते लेकिन आप लोगों को चांस नहीं मिलता तो उस समय चिड़चिड़ापन

उनकी वृद्ध व्यर्थ संकल्प चलेंगे चलेंगे ना, तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना। अब फर्क करना, विचार देना, इसके लिए उस विचार को इच्छा के रूप में बदले नहीं कर। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। वह मुख से

स्वर तो करके विचार, स्वर रख के नहीं। तो मैंने कहा तो होना चाहिए, ये नहीं सोच आफर बने करो ये रंग।

0: इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया लंका मुक्त हो गए तो ये भी लगा नहीं रखेंगे कि जरूर होना चाहिए वो नहीं चाहिए नहीं ठीक है ऑफर किया और आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी स्वार्थ किया ऑफर ईशान के वश आफत और क्रोध पैदा करे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी समय परमान सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। समझती है कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय शिक्षक बनाना। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद की वैराग आद से अंत तक रहा। कारण से मेरा समझकर पर्सनल अपने वृद्ध एक रुपए की चीज यूज की कि कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी फिल किया कन्याओं माताओं को मेरा पन नहीं बेहद किए फेरा की रहे इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में लगाई तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे चेंज किया बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज किया कहने से भी सुनते हुए उपराम रहे सदा बच्चों को सने हुए भी ये शब्द रहे सब बच्चों के लिए तो इसको कहा जाता है बेहद सामने है हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगा रहा बेहद की वैराग वृत्ति सामने होते हुए बच्चे और सभी बच्चे अन्य बच्चे बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में

0: Mesin Atiwi Pasokina Pasvita Anerka Certificate Lidia Vishishkaran Behat Ki Vairag Vritti.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा आज भी

Thank you.

चल रही है, चल।

0: बनानी पड़ेगी। आज ये कह रही है बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे टॉयलेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है। लेकिन स्वयं हाथ में है या बेहद, हाथ की बातें के पीछे आप नहीं दौड़ो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती है। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। और बाप को भी हर बच्चा प्यारा है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है, आप बच्चे। एक एक कितना प्यार है, आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यारा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिक्कियां बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्कियां देने में एक दो को भी समोचार, लेकिन कि मैं के साथ सिक्कियां दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो वो भले सिक्कियां दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो किम्या के साथ सिक्कियां दो। सिर्फ सिक्कियां नहीं दो, रहम दिल बन के सिक्कियां दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे का कमजोरी की किमिया हो जाएगी। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

Gelati.

0: अपने जीवन की बातें भी करती हो। लगातार योग अग्नि रूप
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

生活

abarcó.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Sit.

ese subsector son

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

हिपोथेक करके कमी सेवा में विशेष पाठ देने में ये कमी ये भी व्यर्थ संकल्प का विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान और आजकल ये

से

0: अब समान बनना कोई।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर तक जाते हो, फिर बाबू याद करते हो तो अभी क्या करे।
2: साथ नहीं

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

maintenant.

one now.

इसीलिए देता है। जैसे बच्चों को वर्क इतना ज्यादा दे देती है जो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Gefahr नजर पड़ती है, लेकिन टीचर्स की नजर नहीं पड़ी है। सुना पांडव, सुना पांडव, बहुत निकल सकते हैं। बाप दादा को कोने कोने में याद आते हैं। कर्नाटक के वारिस चला सकते हैं। क्या समझा? अभी निकालना और बहुत सहज निकल सकते, सिर्फ अटेंशन नहीं दिए, जनरल सेवा में लग गए, पर्सनल सेवा।

सेवा का चमत्कार वारस निकाल सकते, पालना चाहिए। उठाओ पान का बीरा, उठाओ दादी को कहो हम सहयोगी बनेंगे, बनाएंगे और बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। आज देखेंगे, 6 मास में देखेंगे। पहले आप निकालो, दादियां आएंगी, कुछ वारस तैयार करो, फिर दादियों को बुलाओ, आएंगी। जो प्लान बनाने चाहो वो बनाओ, लेकिन वारस निकल सको जाना। टीचर्स वारिस क्वालिटी कैसे निकाली जाती।

0: क्या समझते हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा 6 मास देखेंगे, 6 मास का टाइम दे रहे हैं। देखो कहाँ से बाइक ज्यादा निकल सकते हैं, कहाँ से बारिश ज्यादा निकल सकते हैं। होना ही है, जब समय समाप्त होगा तो सब निकलेंगे ना, निकलेंगे जरूर। सुना सिर्फ कांध नहीं हिलाना करके देखा ना, कर्नाटक वाले कांध बहुत अच्छा हिलाते, ऐसे ऐसे करते अच्छा कर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
1: Yeah.

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

मास्टर दादा बना के अपन ने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतने विश्व की आत्माएं जान

वायुमंडल द्वारा

करो। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्यूटी को रॉयलिटी, पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयलिटी कहा जाता है। तो अपने रॉयलिटी को याद करो, अनादि रूप में भी आप आत्माएं पाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो, जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपना आदिकाल की रॉयलिटी याद करो, फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयलिटी याद करो। सभी के सिर पर रॉयलिटी का लाइट का ताज, अनादि आदि और किसकी नहीं है। नेताओं का, अभिनेताओं का, धर्मात्माओं का चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा कितनी रायल है। चित्र को देख करके ही सब खुश हो जाते, चित्रों द्वारा भी जन्म सिद्धाधिकार पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, जीसस।

0: संपन्न करना है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ बोल
1: रहे हैं। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: थोड़ा सा

He said.

Шарат китан сети.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Abonnierchen.

कुछ

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

awesome.

0: intentions. Reiki Diki.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाने जमा होता जाए। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, जमा कितना है, हर खजाने का चार्ट देखा तो क्या देखा कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। समय का मैं तो चलते चलते कभी कम इमर्ज रूप में होता है। अगर सदा समय का मैं तो याद रहे इमर्ज रहे और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है। गलत नहीं लेकिन साधारण ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते। एक घंटे की चेकिंग करो, संकल्प कितने साधारण जाते जमा नहीं होते। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं तो बाप दादा को भी से बहुत देते बाबा, ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं संकल्प में थोड़ा चलते संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी है, थोड़ा समय तो पड़ा है, तो समय पर संपन्न संपन्न करेंगे। समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है वर्षा लेने में। तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता। और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते, अगर बहुत समय का जमा करना होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सकते

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक

Insomni attack. Don't measure it.

Швадра. Вот я и ты.

Oíme. Yo quiero pelota. Oíme. Man sabe, baby.

sempre em teria que roubar. Yeah.

Sam nenek.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी समय परमान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति का अचानक
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: फिता

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा धन मान धन जो भी है, कुमारों के पास तो धन ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो भी है सब आपका है। ये वादा किया है। अच्छा हाथ दिला रहे, पक्का किया है। धन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी किया है। Oh no.

hediye arttı. Abi bas. Oh, yeah.

0: Thailand. 7 एक शब्द याद करो मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा बाप की ये आज्ञा है याद नहीं है वो सोचो जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को सुतई याद होता है सुतई प्यारा होता है सुतई बाप के समीप होता है तो चीख करो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: shit.
1: Percentage nikalo sare

100% waste. तो उसको बचाओ. ऐसे नहीं समझो, थोड़ा सही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है. लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती. नंबर 4 बना देंगी, नंबर 1 नहीं.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लदा बचे। इसलिए अपने सिक्की लदे सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा बाप अवश्य बताओ। लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना, मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं दे। दिल साफ मुराद हासिल, किचरे वाले दिल में बाप नहीं आता। उस समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी, सिर्फ ज्ञान से जाना लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया। प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कितना वे आने का कारण थे अपमान का, मैं शब्द थे पान का, मैं एक है, मैं आत्मा हूं ये मैं, लेकिन थे पान के मैं शब्द अपमान का भी होता, अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिरता। तो बाप दादा आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं इसको योग अग्नि में जलाओ, अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूं, इस मैं शब्द को पका करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है, तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो जलाना है, क्योंकि ये भी तो भोज है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे ऐसे आपके टॉप की स्टेज सबसे टॉप की है परम धाम, बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर आपके साथ आके बैठ जाओ, जैसे थक जाते हैं ना तो 5 मिनट भी का शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे बीच बीच स्थान कौन से संगम बारा की सुई टाप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए सेवा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: डबल फॉरेनर्स का फेवरेट शब्द।

भी किनारा नहीं करता।

Peace out.

सभी बच्चों को रिवाइज करा रही है। किस

observa essa mania. Jesus.

What do you mean?

Sarva samad. Kasa me prit samad.

one.

Peace.

Perché anche te vai, vai.

Flag para amassar.

Exacto.

Levarsi. Vasciarsi. Donobrgarsi. Tak widział.

Şükür ne güzel.

Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सोने समय अपने पति को बाप दादा को पोता मिल सजा

0: साथ सो जाओ अकेले नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Ciao.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो

परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करे, बदली करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालते हैं, मंजूर है, बताए बताए। अच्छा, बाप दादा 6 पास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाँ जी किया तो बच्चों को भी हाँ जी करना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। बाप दादा तो कहते हैं स्व परिवार से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैं बन से मरना है। तो मरना भी पड़े श्रेष्ठ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आगे के लिए अब दीवार पुशारत कर, आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। सफलता की चाबी तो बाप दादा जो भी आज बचे आए हैं उन्हों को विशेष दृढ़ता

0: आगे बढ़ाती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं। Joe.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है, आ सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहां से है? कोई और संस्कार कमजोरों के ना

0: 会比什么也深刻感感受呢
1: God.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: People.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सक्सेसफुल कभी भी जो नहीं होते उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना, कहते हो के मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो? विजय ही है इससे कमजोर चाल को समाप्त करो। फंसो नहीं लेकिन समाप्त करो। शक्ति है समाप्त करने की। धीरे धीरे नहीं करो, फट सेकंड में इस जान को पाने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त सहज और सुधै रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते, लेकिन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

See.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

menneske. Nei. Da til skikast. Barnkjetter. Så menneske.

So

0: ser que si cobicoi taitel milte tu bobi apana bagye samaste lekin aap bacho
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Let's see. Shetiante Neki Seba. Mokase. Fani Ki Seba. Karame. Kurose Seba. Samad Samad. Kushite neki seva. Is pena pena seva me. Manako pisirako. Kyoke. Sari vishwa me.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप में निश्चय, सभी बच्चों का है, तब तो यहां आए। पाप का भी आप सब में निश्चय, अपना बनाए। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तीन मास का अभ्यास, सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो मजबूरी से किया, तीन मास पास करने हैं फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: क्या करेंगे?

0: Attention to apne aap apna program banao apna program banao jisme बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रहो, मन से बिजी। शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर वन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे, तो जैसे से पहले नंबर होता

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: kai program se se hote hai jo vishesh atmao ke nimitt hote hai to baap dada ke paas dadiyon ke paas kyunki sakar mein to dadiya hai तो संकल्प पहुंचते हैं। क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं? मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन,
1: some

Yes.

summer.

जीवन मुक्त, ब्रह्मांड जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्रह्मांड श्रेष्ठ जीवन मुक्त।

इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना। क्यों समय की हालत को देख रहे हैं? भ्रष्टाचार का बोर कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है। श्रेष्ठाचार

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्तर वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन और आलस और बहानेबाजी खेल देख लिया। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल खूब देख के बचोगे। जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस,

चक्रम देखने चेत कभी भी देखो क्रोध आता है, अपमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताती है? एक बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाई देती है, कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते, ये तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात तो रही है, ये होता ही है, ये क्या है, अलबेलापन नहीं है, ये भी तो करता है, मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया, तब हुआ, मैंने किया रंग वो नहीं कहेंगे, ये किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ, दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज, ये ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने कहा वो नहीं होगा, वो करे तो होगा, बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते, जैसे पहले बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया, क्या ऐसे ही चार का संकल्प ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ, और बाप जो बार बार कहते हैं वो याद नहीं, उसने जो किया वो याद आ गया, ये बहानेबाजी हुई ना।

0: जो चार को हल्का कर देते तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ये नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे के नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे। वो तो 3-4 मास के बच्चे के करते हैं। तो आपके बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे। हाथ बाप दादा नहीं उठाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते। लेकिन जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन बाहर को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

से करता चाहे शरीर कैसा भी

नोट करना, सुबह को उठते चेक करो, सब

ci trome. Sada. Da verdade. Tu por me. Que irade.

Guess it.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देख पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है। लेकिन समय तो बीत चुका ना, इसलिए
2: किसका

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखो फायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, फायदे का फायदा नहीं उठाते हो, फायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो, फायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद फायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और सो उन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ये नहीं कहना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए सोनती में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों? दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, तो ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ऐसे तो नहीं, कभी आप मन के मालिक होते, वह कभी मन आपका मालिक होता।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्यवन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज क्या संकल्प किया? बनना ही है ब्रह्मा बाप समान, बनना ही है, बनना है नहीं बनना ही है। कोई भी बातें हैं, बात के बजाय बाप को आगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे ओले ना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर नहीं आती। लेकिन इसका कारण क्या? समय शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सेट बेस्ट तार्स चलते हैं वह कभी टेंशन आता है तो सही स्वमान की सीट छूट जाती। बाप दादा ने कितने स्वामी

सर्वशक्तिया हाजिर।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Ist

se pierdo. Sayok built.

sei io.

Mesa Mem.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किराए देने पड़ेंगे। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है न, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना भरा सको उतना भरा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हुआ स्पष्ट? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी है हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

supposed to

रिजल्ट देखो जो संकल्प किया वो कहां तक पूरा हुआ। अगर परसेंटेज भी हल्की हुई पहले उमंग बहुत होता है, पीछे थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है, वो ढीला होने नहीं देना। करके ही दिखाना है, ये दृढ़ संकल्प करना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं।

संकल्प सामने लाना। और रोज अमृत

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Awesome।

subtle Faretia Skyadgar Ixo Atki Mala Socho Ka Ek Number Or Ka Ixo Atma Number Kyovana सब एक नंबर क्यों नहीं बना, 16,000 क्यों बना, कारण वरेटी संस्कार को समझ नॉलेज फुल पन चल Shove a bhavana, shove a kama.

0: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है.
1: यूथ
0: और एजुकेशन,
1: चलो
0: सभी का भी छप रहा है कहते हैं, मिला जुला
1: छपना चाहिए. क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी फ्री होके पढ़े, और हर वर्ग का पढ़ने से प्रभाव पड़ता है. कई समझते हैं कि कर्म करते हुए, ड्यूटी संभालते हुए कुछ हो नहीं सकता है, तो लोगों को उमंग उत्साह आवे. तो जब ये बने हैं तो हम भी बन सकते. तो ऐसा किताब निकालो और अपने जो भी सेंटर्स हैं वहाँ सब जगह में जहाँ लाइब्रेरी हो वहाँ.
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम.
4: सत्यम शिवम सुंदरम.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सान नहीं होता है, तो आपका भी बड़ी बार उसमें मनसा से

ici.

सभी को मुक्ति में भेज। आपके वरदान से

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल की

0: ಕ್ವಶನ್ ಬಡ
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे जो जाते तो जैसे आप सभी ने मत रखी वैसे मदद भी बाप करेंगे, साथी भी मदद करेंगे, तो प्रैक्टिकल में दिखाई देगा परिवर्तन। छोटी मोटी बात है ना, वो परिवर्तन आप ही कर लो, कहना नहीं पड़े। समझदार तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो नहीं विश्व परिवर्तन।

しわが。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: संकल्प के कारण तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता। ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी स्मृति में भी बैठते बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं, लेकिन अभी ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल